सत्यसंधो दाशार्ह सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अंबो निधिरनंदात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रुतशाध्यक्षो।

नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि।